सतगुर का खव्या चंदुआ उगवणो ता आथ वणो चो चक्की किया लोवा जिनी गुरु ना सेवया मन पया मोवा दोणी चोणी करा मात

जाग तो मानता है किसर बरीत कार बल बसा का बिचारे अपना जमना जो व्यवहारे सर नंदी का ए चढ़ाव हजर जरा सो निजर जरा नाथ चौंक करा।

दुख सो क्यों विसरै मेरी माए। साचा साहिब साचा नाय रहाओ, सचे नाम की तिल वड्याई, अख थके कीमत नहीं पाई।

तेरे क्या गुणिया खुब खाना। जो सेवा है जो सेवा है तुद जी जा नानक तिन कुरबाना। हर त्यावै है तुद जी से जान जुग मह सुख वासी। से मुक्त पै जिन हर त्याया जी तिन टूटी जाम की फांसी। जिन निरभाओ जिन हर निरभाओ तिहाया जी तिनका पहु सब गवासी। जिन सेवया जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से तहन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता। तेरी भगत तेरे

तेरी अनेक पढ़ है वो सिमरत सास जी कर क्रिया खंड कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावे है मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुझे बड़ अवर न कोई तू जुग जुग

somebody. Kabiyo bacho binti chaupai. Amri karo hadar cha purn hoye chit ki ichha. Tab charnan man rahe humara apna janu karo pratpara. Amre dusht sabbat mukav ho aap hadar moh bachav ho sukhi basai moru parvara. Sevak sikh sabbe kartara mor cha nij kar dai kariyai sab hiran kau aaj sangharya. Purn hoy humari asa tor bhajan ki rah pyasa tumh chhad koi avran tyam jo bhar chaho so tum te paun. Sevak sikh humari tariya hai chun chun satar humari mariya hai. पाप हाजा मुझा अबरिया मरण काल का त्रास नवरिया है हो जो सदा हमारी पच्छा श्री अस तो जजु कर हो रक्षा राख ले हो मोह राखण हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुमहु पुरी चातर दास कंता काल पाए ब्रह्मा बवतराऊ काल पाए शिव जू अवतराऊ काल पाए कर विष्णु प्रकाशाऊ सकल काल का किया तमाशा

गुरु जो चारे तुम सब ही ते रहतन रल मऊ जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंभ आद अनिल अनाद संभ ताका मूढ़ चारद भेदा जाको भेव न पावद बेदा।

आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सीती मन बजिया वधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आईया शब्दोता गावो हरि के राम मन जनी बसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब सरना अंगीकार ओह करे तेरा कार्ज सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मन हम सारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले सच साहिबा क्या नाही घर तेरा घर ता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी ना मन सावे नाम जिन कै मन मस्या वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारू सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब बुझाइया

गोविंद सिंह गौर नमो चरण अरविंद जिसमें है अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदा कर अनुराग

ना सुजई जे तिस गुण कोई करे। सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनया धरत धवल आकाश, सुनया दीप लो पाताल, सुनया पोहे न सका काल।

सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गाव है वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सरा जुग जुग वेदा नाले गाव है मोहनिया मन मोहन सुरगा मछ पाए आले गावन रतन पाए तेरे अठ सठ तीर्थ नाले गाव है जोध महाबल सूरा।

त्रिमान है, निदान है, त्रिवर्ग है, स्वर्ग है, अनिल है, नाद है, जे है, जाद है, जन्म है, वर्ण है, भूत है, पर्ण है, अगंज है, भंज है, तूज है, झंज है, मीक है, रफीक है, तंद है, बंध है, निर्भूज है, सूज है, अकाल है, जाल है, लाह है, जाह है, नंत है, महंत है, अलीक है, निरश्रीक है, निरलंब है, असंभ है, गम है, जम है, पूत है।

तरंग है, भेद है, भंग है, जीजुल निवाज है, गनी मुल खिराज है, निरुक्त स्वरूप है, त्रिमुक्त विभूत है, प्रभुक्त प्रभा है, सो जुगत सुधा है, सदैवन स्वरूप है, भेदी अनूप है, समस्तो प्राज है, सदा सर्वसाज है, समस्तुल सलाम है, सदैवल अकाम है, निर्बाध स्वरूप है, अगाध है, अनूप है, ओअंग आद रूप है, नाद स्वरूप है, नंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकामे, त्रिपरगं त्रिबाधे, अगंजे अगाधे, सुभंग सर्वभागे, सो सर्वानुरागे, त्रिभुक्त स्वरूप है, छिज है, छूत है, के नरकं प्रणास है, पृथ्वीउल प्रवास है, निरुक्त प्रभा है, सदैवं सदा है, विभुक्त स्वरूप है, प्रयुक्त अनूप है, निरुक्त सदा है, विभुक्त प्रभा है, अनुक्त स्वरूप है, प्रयुक्त अनूप है, चाचरी छंद भंग है, नंग है, पेख है, लेख है, अपर्म है, कर्म है, नाद है, जुगाद है, जय है, वह है, पूत है, तूत है, अनास है, उदास है, तंद है, बंद है, भक्त है, विरक्त है, नाश है, प्रकाश है, निचिंत है, सुनिंत है, लिख है, देख है, लेख है, पेख है, पटाह है, अगाह है, असंभ है, गंभ है, नील है, नाद है, नित है, सुनित है, जात है, जाद है, चतुर्छंद तत्प्रसाद, सर्वंग हंता, सर्वंग गंता, सर्वंग ख्याता, सर्वंग ज्ञाता, सर्वंग हर्ता, सर्वंग कर्ता, सर्वंग प्राणं, सर्वंग त्राणं, सर्वंग कर्मं, सर्वंग धर्मं, सर्वंग युक्ता, सर्वंग मुक्ता, सावल छंद तत्प्रसाद, नमो नरकनाशे सदैवं प्रकाशे नंगं स्वरूपे अपंगं विभूते प्रमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे, अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते नंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकामे, निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे, न पोत्रा न पुत्रा न सत्रा न मित्रा न ताता न माता न जाता न पाता, निरसाकं श्रीक है, मितो अमीक है, सदैवं प्रभा है, जय है, जा है, भगवती छंद प्रसाद, के जाहर जूर है, के हाजर हजूर है, हमेश्वल सलाम है, समस्तुल कलाम है, के साहिब दिमाग है, के हुसनल चिराग है, के कामल करीम है, के राज करीम है, के रोजी देहंद है, के राज करहिंद है, करीमुल कमाल है, के हुसनुल जमाल है, गनीमुल खिराज है, गरीबुल निवाज है, हरीफुल सिकन है, हिरासुल फिकन है, कलंकं प्रणास है, समस्तुल निवास है, अगंजुल गनीम है, रजाय करहीम है, समस्तुल जुबा है, के साहिब किरा है, के नरकं प्रणास है, बहस तुल निवास है, के सर्वुल गवन है, हमेशुल रवन है, तमामुल तमीज है, समस्तुल अजीज है, परम परमीश है, समस्तुल अदीश है, देशुल लेख है, हमेशुल पेख है, जमीनुल जमा है, मी कुल इमा है, करीमुल कमाल है, के जुरत जमाल है, के अचलंग प्रकाश है, के मितो सुबास है, के अजब स्वरूप है, के मितो विभूत है, के मितो पसा है, के आत्म प्रभा है, के अचलंग अनंग है, के मितो भंग है, मद भार छंद प्रसाद, मन मन प्रणाम गुणगन मुदाम, अर बरा गंज हर नर प्रपंज, अन गन प्रणाम मन मन सलाम, हर नरा खंड बर नरा मंड, अनुभव अनास मुन मन प्रकाश, गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम, अनछिजंगासन भंग, उपमा अपार गत मितोदार, जल थल मंड जल थल मंड दिस विस भंड, जल थल महंत दिस विस बेअंत, अनुभव अना त्रित थल पुरास, आ जान बा हुए कैसदा, ओ अंकाराद कथनी अनाद, खल खंड ख्याल गुरबरा काल, कर कर प्रणाम चित चरण नाम, अन छिजगात आज जन बात, अन झंझगात अनरंज बात, अन टुट भंडार अन ठट अपार, आ डीठ

विस्माद रूप विस्मा रंग विस्मा नंग फिर जंत विस्माद पान विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड विडानी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साध लगै प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह

आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां वादाहियां राग रतन परवा

बिंद बिंद चुख चुख होए। सिख पंथ के महान शहीद भाई साहब भाई मनी सिंह जी, जिन्होंने लाहौर नखास चौंक दे विच बंद बंद कट के बिंद बिंद टोटे टोटे करके उन्होंने शहीद किया गया, उन्होंने पवित्र शहीदी दिहाड़े नू समर्पित अज के प्रोग्राम है। आओ गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह जी का उच्चारण किया होया पवित्र शब्द, नानक तां का दास है बिंद बिंद चुख चुख होए।

कुदरत का मन हमारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सेवक जन माना प्रतख गुरु निस्तारे गुरबाणी कह सेवक जन माना प्रतख गुरु निस्तारे पतित पावन भगत वच्छल करुणा निदान गुरु गरीब निवाज श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र निघी आगोश विच हफ्तावारी सज रहे सुंदर दीवाना विच सुभाईमान जुड़मिल बैठी गुरु प्यारी गुरु की साजी निवाजी साध संगत जीओ सतगुरां दी बख्शिश कीती होई फतेह प्रवान करो आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। महाराज जी दी अपार रहमत सदका पवड़भागी गुरसिख संगता गुरु दरबार अंदर दिन दे दूजे पैरां दे सज रहे सुंदर दीवाना विच सुभाईमान हो के सतगुरां दे पावन पवित्र दर्शन दी दारे परसना कीते हन। अमृतमई बाणी दा शब्द कीर्तन सत्कारयोग रागी जत्थे दी मुबारक रसना तो सरवण करके मिले हुए अमोलक मनुखा जन्म दे सुआसां घड़ियां समय नूं सफल बना रहे हो। आपां सारे वडभागे हाँ गुरु प्यारी साध संगत जी जो अज पावन दे दीवान हन उह सिख कौम दी महान हस्ती महान शहीद अमर शहीद सो सचखंड श्री अमृतसर दरबार साहिब जी दे हैड ग्रंथी मुख ग्रंथी सिर ते रुमाल बन के मुख ग्रंथी अते श्री अकाल तख्त साहिब जी दे ओ समय दे जथेदार अमर शहीद भाई साहब भाई मनी सिंह साहब जी दे शहीदी दिहाड़िया नूं समर्पित सजा रहे हाँ जिन्हां दी करनी दे तुल इतिहास नूं फोलिया पता लगता है बहुत घट सिख ने बहुत महान शहीद ने जिन्हां दे तुल पहुँचना एडी अवस्था पर जिन्हां नूं महाराज जी ने ज्ञानी की पदवी दित्ती सी विशेष करके गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने ज्ञानी की पदवी वो केवल भाई मनी सिंह साहब जी हैं। ज्ञानी दे अर्थ ज्ञानवान दे उन्होंने अपने जीवन विच जिथे उन्होंने कोल महान ज्ञान सी गुरबाणी का और वो ते सी पर असल विच ज्ञानवान हुंदा की है जो आत्मा का ज्ञानी हो जाता है जेड़ा शरीर दे दुखां सुखां विचों निकल जाता है आत्मा का आनंद माणदा है इहदा साखी चेतन जो सूक्ष्म शरीर है उहदा ज्ञान पा लैंदा है असल ज्ञानी वह है उहनूं गुरबाणी ने ज्ञानवान कहा है। भाई साहब भाई मनी सिंह साहब जी उन्हां नूं ज्ञानी की पदवी मिली है तो वह उस ज्ञानी की पदवी तो महाब्रह्म ज्ञानी हो निबड़े ऐसे महापुरश कल्ले ज्ञानी नहीं आत्मा दे ज्ञानी होण दे नाल नाल वो महान गुरसिख पूर्ण गुरसिख ब्रह्म ज्ञानी हो निबड़े
जिथे उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब महाराज गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की संगत माणी है। धर्म युद्ध होंदे हुए वेखे ने, पंज पुत्र उन्होंने शहीद होंदे ने धर्म युद्धा विच। उत्थे वो ये नहीं बई शास्त्र उन्होंने चलाने नहीं आते सन, उन्होंने शास्त्र चलाने आते सी, लोहे दे बने हुए तलवार ढाल आदक जो भी, वो सूरमे भी सन। पर लेकिन जेड़ा आत्मा दा ज्ञानी जेड़ा जंग उन्होंने लाहौर दरबार नाल जो अत दा जालम रूप धारण कर चुकी सी उस वेले लाहौर दी सरकार जकरिया खान, उहदे नाल जेड़ा ज्ञान दी तलवार लैके जंग कीता ते वो भाई साहब ने जितया है। ज्ञान दा जंग, ज्ञान दी तलवार नाल उन्होंने जंग करके ते जय जय जयकार खटी है। वो ऐसे महान ब्रह्म ज्ञानी महापुरश सन भाई साहब भाई मनी सिंह साहब जी। जीवन बहुत वड्डा है, क्योंकि जे देखिया जावे जीवन विच शरीर करके भी बली सन, जिथे आत्मा करके महान सन, ओ तिथा जोध महाबल सूर तिन मह राम रहिया भरपूर, इस अवस्था दे मालक सन, सूरबीर सन, जिन्हों गुरु अर्जन देव साहब जी ने कहा कि जा को हर रंग लागो इस युग में, सो कही इत है सूरा आत्म जिणै सगल वसता कै जा का सतगुर पूरा। जिदे उपर पूरा सतगुरु खड़ा है, सिर ते हथ है, जिदा मुरशद पूरा है, वही पूरा ज्ञानवान हो सकता है, वही पूर्ण पुरख हो सकता है। जिन्हों हरी वाहिगुरु दे नाम का रंग चढ़ गया इस कलू दे समय विच, भगती का रंग चू चूहा, भगती का लाल रंग चढ़ गया, सो कही इत है सूरा। असल विच सूरमा उही कहा जाता है। सब तो पहला भगती है, भगती द्वारा ही धर्म युद्ध करन दी जूझन दी शक्ति पैदा हुंदी है। भगती नाल धर्म विच परपक होई होईदा है, ते धर्म ते जदो सिद्धक बन जाता है फिर वह सूरमा बन जाता है। महाराज सच्चे पातशाह जी ने सो कही इत है सूरा आत्म जिणै सगल वसता कै जा का सतगुर पूरा। जिहड़ा आत्मा नूं जित लैंदा है, सो अपनी आत्मा नूं जाण लैंदा है, पछाण लैंदा है, मन बुद्ध चित अहंकार तों परे है निर्मल उज्जल आत्मा स्वरूप, जिथे मैं नहीं है तू तू ही है, नाम ही है, रस ही है, सिमरन ही है। आत्म जिणै सगल वस ताक है, उहदे फिर वस जिहड़ा जित लैंदा है, मन मर जांदा है जी, सारी दुनिया दे वस हो जांदी। पर जीते पूरे सतगुरु दा हथ है, ये अवस्था उहनूं प्राप्त हुंदी है। वो मन नूं जितण वाला सूरमा कोई विरला टावा महान हुंदा है, कोई हुंदा है। सच्चे पातशाह जी ने बख्शिश की, ऐसे वो ज्ञानी सन आत्मा तो आत्मा दे ज्ञान विच जींदे सी। हर महाराज जी दे भी बचन पावन बाणी विच आउंदे ने कि काया कापर चीर बहु फारे हर रंग न लहै सुभागा। ये काया रूपी कपड़ा जिहड़ा वा, एक कपड़ा हुंदा जिहड़ा आपां इहदे उपर दी पाउने, कुड़ते पजामे किन्ने तरह के अपने ड्रैस ने, यह आपां पहलां खरीददे वां, ते जिस वेले खरीददे आं साध संगत जी फिर आपां दर्जी कोल टेलर कोल ले जा के उहदे सपुरद करदे आं भी इह मेरा मेच लै ला ते मेरी पोशाक तैयार कर दे। वो फिर कपड़े नूं कटदा है कैंची नाल, दर्जी जिहड़ा कट कट के मेज लैके, तो वह जिहड़ा अपना साबित कपड़ा दिता हुंदा वा उहनूं कई हिस्सों च कट देंदा है। जिवें वह कपड़े कट्टण वाला दर्जी कपड़े नूं कट्टी जांदा है उहनूं कोई फर्क नहीं पैंदा। इस तरह आत्म ज्ञानी दी अवस्था हुंदी है, एडा वह सूरमा हुंदा है
ਵੀ ਕਾਇਆ ਕਾਪਰ ਚੀਰ ਬਹੁ ਫਾਰੇ, ਹਰ ਰੰਗ ਨਾ ਲਹਿ ਸੁਭਾਗਾ। ਕਾਇਆ ਰੂਪੀ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਨ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਪੁੱਗੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹਰੇਕ ਧਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਇਹ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਨਲ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਨਸੂਰ ਵਰਗਿਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਲਟਾ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਣ 'ਤੇ। ਏਡੇ ਏਡੇ ਪੁੱਗੀਆਂ ਹੋਈ ਸਰਮੱਦ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਇਹ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਨੀਚ ਸਦਾਵਣਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭ ਲੇਖਾ ਅੰਦਰ ਪਾਈ। ਕਲਯੁਗ ਨਾਵਾ ਕੀ ਵਡਿਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਕਿਛ ਹਉ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਕਛ ਆਹੇ ਨਾ ਮੋਰਾ, ਅਵਸਰ ਲੱਜਾ ਰਾਖ ਲਿਓ ਸਦਨਾ ਜਨ ਤੂੰ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਧੂੜ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀਆਂ 'ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਖੱਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕੋ ਸੱਟ ਨਾਲ, ਕਾਪੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਤੇ ਮਨਸੂਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨੇ, ਕਈ ਮਨਸੂਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਕਾਪਰ ਚੀਰ ਬਹੁ ਫਾਰੇ, ਹਰ ਰੰਗ ਨਾ ਲਹਿ ਸੁਭਾਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਹੱਡ ਚੰਮ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦਾ ਸਾਖੀ ਚੇਤਨ ਆ, ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਜੋ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਬੰਧਨ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕਾਇਆ ਕਾਪਰ ਚੀਰ ਬਹੁ ਫਾਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਰੀ ਜਾਵੇ, ਫਾੜੀ ਜਾਵੇ ਦਰਜੀ ਵਾਂਗ, ਹਰ ਰੰਗ ਨਾਲ ਹੈ ਸੁਭਾਗਾ। ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਉਹ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ ਹੁਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਪਲੇ ਖਾਧੇ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ਕ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਬਿਆਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਘਾਲ ਘਾਲਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਐਸਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦੁਬਧਾ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ। ਹਰ ਟਪਲਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੋਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਗਏ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉੱਪਰ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ, ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣੀ ਜੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਣੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪੋਥੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਰਾਫ ਪੰਥ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਨਿਖੇਰੀ ਆ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਵੀ ਐਵੇਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ ਮਰਨ ਵੇਲੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ, ਅਵਸਥਾ ਆਪਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ, ਵੀ ਕਾਇਆ ਕਾਪਰ ਚੀਰ ਬਹੁ ਫਾਰੇ, ਹਰ ਰੰਗ ਨਾ ਲਹਿ ਸੁਭਾਗਾ। ਹੁਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਸਪੀਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਵਿਕੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟ ਦੇਣ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣ। ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ
मेरे सिर विच अग बाल देण, मैं सी नहीं करूँगा, सी कढ़ा के विखायो। ये हुंदी है अवस्था, कहना सौखा है, पर जे करनी सी, उहदे कोल ज्ञान सी, गुरु की बख्शिश सी, थापड़ा सी, तां उहने बचन कहे है, नहीं गौरमेंट फड़ के कर दिंदी झूठा उहनूं। ये हुण दे हुण दा साडा इतिहास है। भाई मनी सिंह साहब जी ने बंद बंद कटवाया वा, तुसीं ये झले ने, सी नहीं कीती। ये वासा हुंदी है, काया कापर चीर बहु फारे, हर रंग न लहै सुपागा। ये वक्री गल है, उहनूं फड़िया नहीं गया जिउंदे नूं, उह मरदे मुजाहिद नूं, जिउंदे नूं फड़ नहीं सकी गौरमेंट, नहीं उहने उह वी करके विखाउणा सी। और गुरु प्यारी साध संगत जी, महाराज सचे पातशाह जी की बख्शिश किन्नी सी भाई मनी सिंह साहब जी, बहुत वड्डा इन्हां दा इतिहास है, बहुत शाना मता इतिहास है। आप जी का पावन जन्म अंबाले दे कोल पिंड कारड़ जिहड़ा थे हो गया सी बाद च, उत्थे इतिहासकार लिखते ने, भावें एक मत नहीं इहदे नाल, दावा मैं भी किसे गल दा नहीं करांगा, अंबाले दे कोल पिंड कारड़ बाबा कालू बाबा काला जी दुलट दे सो घर वेखे, माता दया कौर जी दी पावन कुख तो 1662 ईस्वी नूं हुंदा है। 4 साल वड्डे ने गुरु गोबिंद सिंह साहब जी तो, उन्हां दा 66 विच हुंदा आपां नूं पता है। और भाई मनी सिंह साहब जी 11 भरा ने, 10 शहीद होए ने समेत आप जी, एडी वड्डी कुरबानी शायद हुण तक इतिहास विच कोई नहीं आया है इन्हां दे तुल। 5 पुत्र शहीद ने 10 पुत्रां विचों। और गुरु प्यारी साध संगत जी, एक छोटा जिहड़ा सी उह बीमार होके शरीर छड्ड गया सी, नहीं शहीद उहने भी हो जाणा सी 11वें। भाई मनी सिंह साहब जी इन्हां दा जन्म होया ते उह नगर उजड़ गया, गिलजे जदों हमला करदे सी, गिलजइयां दे हमले दौरान ये नगर भी उजड़िया अंबाले दे कोल करके, दिल्ली नूं फौजां जांदियां सी आम, वही रास हुण भी वही हाईवे इंटरनेशनल लाहौर वल्लों जदों आउने आप। और गुरु प्यारी साध संगत जी उत्थे इन्हां दा जन्म हुंदा, नगर उजड़ गया ते ये बाबा काला जिहड़ा सी उत्थों छड के नगर सुनाम दे कोल आके वसदे ने। वो पिंड दा नां सी कैंबोवाल, कैंबोवाल दे विच उत्थे भी हमले हुंदे, उजड़ जांदा ते फिर वसदा लौंगोवाल। उत्थों दे इतिहासकारां ने इन्हां दा पिंड ज़्यादातर मालवे विच लौंगोवाल लिखिया, ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ने तां करके जन्म लेकिन उत्थे। और आप जी नूं उस वेले रिवाज सी भी सिख बच्चियां नूं शरदा नाल, जिन्हां दे बच्चे महाराज बख्शे वाधू बख्शदे सी, वो बच्चियां नूं गुरु के सपुरद चढ़ा आउंदे हुंदे सी छोटे हुंदे आ, गुरु की सिक्खी विच परपक हो जा, साडी कुल दा पार उतारा हो जावे। ये भावना रख के बाबा कालू जी ने, बाबे काले ने भाई मनी सिंह, भाई मनी जी नूं, मनी राम भी आउंदा है, इन्हां नूं गुरु तेग बहादुर साहब जी दे कोल पावन धरती श्री आनंदपुर साहब वस चुकिया सी। 1674 ईस्वी नूं भेट कीता लिजा, 12 साल की उम्र उस वेले आप जी की, तो महाराज सच्चे पातशाह ने इन्हां नूं रखिया कोल, गुरु घर विच वापस आ गए। महाराज जी ने पुछया गुरु तेग बहादुर साहब जी ने, नाँ की है बालक का? कहन लगा जी मनी। महाराज कहिंदे सचमुच सचमुच सुची मनी है तू, सचमुच सुची मनी, ये वरदान पहले दिन तुहानूं गुरु तेग बहादुर साहब आप जी नूं दिता। महाराज जी ने विद्या का प्रबंध किया, गुरु गोबिंद सिंह साहब जी पटना साहब तो आ गए सी आनंदपुर साहब, मगरला वो समा सी 74 सन का, 75 च मार